पौड़ी वड़ी हूँ अडाया पार तेरा मर्तबा रंग परंगा नेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किश जाने ला सब किश तेरे वास तेरा घर भला तेरा घर आनंद वधाई तुद घर माण महत्ता तेज अपनाया पजर सर्व कला भरपूर दिसै जत कता।

गुरु बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगड़िया ने धर्म हित शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चक्र चेहन अर वरण जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख भेको कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अम तुज कह जै कोट इंद्र इंद्राण साह सहान गण जय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत वंत्रण कहत तो सर्वनाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत जब लो नहीं पागल लारे उदय तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो कल घोर समुंदर मैं बूढ़त थे कब मिटहा नहीं रे पछतायो तत् विचार जह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो जप्यो जने अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्व ना आयो तरण गगन अवखंड मह जोत स्वरूपी रहो भर भन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन प्रतख हर हम धनवंत भागठ सचनाय हर गुण गावह सहज सुभाय पियू दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरा मन भया निधाना रतन लाल जाका कछु न मोल परे भंडार अखूट अतोल खावे खर्च रल मिल।

तोट न आवै बद दो जाय। कहो नानक जिस मस्तक लेख लखाय। सो एत खजाना लया रड़ाय। आनंद पया सुख पाया मिल गुर गोबिंदा। सबे काज सवारे जा तुद पावंदा। सुख टल गुर सेवी अहन सुसहज सुभाय। दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दी नूर अरसह कुरसह। तुद रिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी। सजन सच्चा पातशाह सिर सहांदे जिस पास बैठिया।

मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

मुख अजले केती छुटी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

मैं गरीब मैं मस्कीन, तेरा नाम है आधार, प्रभ मिल बे की चाह, तुम मिलते मेरा मन जियो, तुम मिलो दयाल, निस्बासुर मन आनंद होत, चितवत किर

पौड़ी वडी वडा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जी आंतर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरा बस तेरा कर पला तेरे कर नंद वधाई तुद कर माण महत्ता तेज अपनाया अबजर सर्व कला परपूर दिसै जत कता नानक दास।

रंग परंग नेक ना जपन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे वास्ते।

सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की

रंग परंग नेक ना जापन करतबा। जी आंदर जियो सब कुछ जाला, सब कुछ तेरे बस तेरा कर भला।

माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंग आईया बरे आईया।

शरण परे की राखह शर्मा, जप तप संयम धर्म न कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच करम मा।

सर से पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा। थाल विच तीन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सधारो जी को खावे जी को पुंचे तिसका होए उधारो यह वस्त तजी न जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिये सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही मैना जोग कीतो तरस पयो तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिलै ता जीवा तन मन थीवै हरिया तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिलै ता जीवा तन मन थीवै हरिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचे आरे आयत। देग तेग फत हे बिरद की पैज, पंथ की जीत श्री

सोरठ महला पंजवा कर दूजा दोपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत मह बैसंतर सगल दूध मह किया नीच मह ज्योत समाणी घट घट माधव जिया सगल बनस्पत मह बैसंतर सगल दूध मह किया ऊच नीच मह ज्योत समाणी घट घट माधव जिया संत हो घट घट रहया समाहयो पूरन पूर रहयो सर्ब मह जल थल रमैया आहयो रहा गुण निदान नानक जस गावे सतगुर परम चुकायो सर्ब निवासी सदा अलेपा सब मह रहया समायो गुण निदान नानक जस गावे सतगुर परम चुकायो सर्ब निवासी सदा अलेपा

हम अब गुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसह कुरसह चटिया। तुद डिठे सच्चे पातिसा, माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातिसाहु, सिर साहा दैसाहु। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाहु। सज्जन सच्चा पातिसाहु, सिर साहा दैसाहु। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाहु। सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सोरठ महला पंजवां, सुख मंगल कल्याण सहज धुन। प्रभ के चरण निहारया, रखनहार राखियो बारिक। सतगुर ताप उतारया, सुख मंगल कल्याण सहज धुन। प्रभ के चरण निहारया, राखनहार राखियो बारिक। सतगुर ताप उतारया, उबरे सतगुर की शरणाई। जाकी सेव न बिरथी जाई, रहाओ कर मह सुख। बाहर फोन सुखा, प्रभ अपने भय दयाला। नानक

0: सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदिया के लख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पाचा नानक सच त्यायन सच जो मार जम्मे सो कच निकच महला पहला
1: वड्डी वड्याई जा वड्डा नाम वड्डी वड्याई जा सच ने आओ वड्डी वड्याई जा निचल थाओ वड्डी वड्याई जाने लाओ वड्डी वड्याई बुझे संभाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा आपे आप नानक कार न कथने जाए कीता करना सरबर जाए महला दूजा
0: एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विच वास एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्मे करे विनास एक ना पाने कड़ ले एक ना माया विच निवास।

दर्शन रूपिया पर तीर्थ नहावे अर्चा पूजा अगरवास बैकार जोगी सुन ध्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोव करे संसार चोरा जारा ते कूड़ियारा खारा बावे कर

राजा मैता कुड़ गुआ सिकदार काम नेम संत पुछिए बह बह करे बिचार अंधी रेत ज्ञान विगुणे पाए परे मुरदार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिगार ऊचे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित इक मत तुझ संजे करे प्यार धर्मी धर्म करे गा बावे है मंगै मुख द्वार जति सदा में जुगत न जाने छड़ बहे।

0: आप नारायण कलातार जग मह परवरयो निरंकार यकार ज्योत जग मंडल करयो जह कहत भरपूर शब्द दीपक दीपायो जह सिखा संग रहयो तत हर चरण मिलायो नानक कुल निमल अवतरयो अंगत लहने संग हो गुर अमरदास तारण तरण जन्म जन्म पासरण तो।
1: जप तप सत संतोख पिख दर्शन गुर सिखे सरण परे ते उबरे छोड़ जंपर की लिखे भगत पाए भरपूर हृदय उचरे करतार गुरु गौर दरियाओ पद गुडवंते तार नानक कुल निमल अवतरयो गुण करतार उचरे गुरु अमरदास जिन सेवयो तिन दुख दरिद्र पर हर पर
2: चित चित मो अरदास कहूं पर कह भी ना सकूं सर्व चिंतु जु पास सात संगत हो तकों तेरे हुकम पवे निशा तो करो साहब की सेवा जब गुर देखे शुभ दिश नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो फरमावे सो कहूं गुरु अमरदास कारण करना।

सहन सुसहज सुभाय दर्शन परसे गुरु के जनम मरण दुख होवे सिफत खसाम दी नूर अरसह कुरसह तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी सजन सच्चा पातशाह सिर सहंद जिस पास बैठिया सोही सबना दा सजन सच्चा पातशाह सिर सहंद जिस पास बैठिया सोही सबना दा सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी तनासरी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन मन जन को पूरन दीजे हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजे बचनी तोर मोर मन मन जान का पूरन दीजे हाओ बाल बाल जाओ

राव बहुत जनम बिछोरी थी माधव इहो जनम तुम्हारे लेखे कहरव दास आस लग जीवा चिर पय दर्शन देखे बहुत जन्म बिछड़ी थी माधव इहो जन्म तुम्हारे लिखे करव दास आस लग जीवा चिर पयो दर्शन देखे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन मान जानको पूरन दीजै।

बल दिवाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समरकै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईऐ जैस डठ सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निद आवे ताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पात

बत्तें बढ़ता गे अमरा कत्त है लै फाड़ करे भी आगो कड़ कागल दसे रागो सुन वेखो लोका इहो बेडान मन